0: ये मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्द रहा।
1: नमस्ते।
2: पिछते
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामान? अब पंडित काल को वेलिए वाक
1: नहीं बेटा।
2: बेटा एंग मातरान எல்லா மாச சம்பளம் அதுவும் பொங்கலையும் புளியரையும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா.
0: ஓ கோன் ஹே
2: யாரு அவரா? அவரு
3: ஏ நல்லது நல்லது, நான் மடப்புடி வரைக்கும் போயிட்டு
2: வந்துடுறேன். வேணு சாஸ்திரி, வேணு சாஸ்திரி.
0: அச்சா வேணு சாஸ்திரி?
2: ஆமா ஆமா.
1: இஸ் பச்சி கா பர்த்டே ஹே, பண்டிட் சாஹியே, பூஜா கரானா ஹே, பூஜா
2: பூஜா கரானா ஹே. இருங்க சொல்றேன். எப்பா திருநாகர் சே
1: ஜன்மதின ஹே, तुम मंदिर से बोला पूजा करवा ले।
3: अच्छा, आप हमारे टेंपल में आए हैं, बहुत खुश हुआ।
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं।
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं। अच्छा बेटी, तेरी जन्मदिन है? क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान।
3: मुस्कान बहुत प्यारी नाम है। अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
4: तारीस पूसम।
3: ओ पूसम, वेरी गुड स्टार, शी विल बिकम अ वेरी बिग हीरोइन, तू तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी।
4: बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो शाचिना टेंपल है।
4: हु इज द मेन गॉड?
3: लॉर्ड शिवा।
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे। ए, वहाँ क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल। चलिए आप चलिए।
2: इल्ला मुनी बेसरा
3: यार, इवाला इवंग वडनाटल वंदर कांग। ये मंदिर का बड़ा पंडित है वेणु शास्त्री जी।
0: वेणु शास्त्री का?
3: हाँ जी।
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है।
1: बेल बॉय?
3: हाँ जी।
1: ये तो बैड बॉय है।
5: इन्हें पतिया बाल्टी दो सुलीर काम है।
3: आइए पूजा करेंगे।
2: बेड बाया என்ன?
5: அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ஒன்ன மாதிரி அயோக்கிய பய